0: Zoe FM XA1.9.
1: Hello, hi. Oi, Sasi, timi kata hideko?
2: Hi, ma aja gaya ko dress up ni ko.
1: Kina, keke panchara tya ha?
2: Tya to sport tatha school ka saman haru, sabe ekhi thama pahincha. Bazar bazar dul nahi pardei na, samay ko pani bachat huncha.
3: Hamra seva haru, school college tatha shaikshik sansthaa haru ko dress painu ka sathai vidyarthi haru ko stationery saman haru supat mulya ma pahincha. Nursery dekhi college samma ka vidyarthi haru lai chahine sampurna saman ekhi thama gaida ko dress up ma.
4: सम्पर्क गैंडाकोट ड्रेस अप गैंडाकोट 8 कांग्रेस चोकबाट 200 मिटर पश्चिम ढुंगाना भवन प्रोप्राइटर सुनिता आचार्य ढुंगाना र दीपक ढुंगाना मोबाइल नम्बर 9846545090 र 9855503060
5: विजय टाङ्चे
4: विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 9862204437
6: अहिले बिहानको 6 बज्यो

माध्यम एम्स एब्रोड एजुकेशन मुख्य कार्यालय भरतपुर चितवन फोन 0556538894 शाखा कार्यालय कालीगण्डकी चोक गैंडाकोट फोन 0785012294 मोबाइल 9809239894